0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

घोषक तथा गायक मोहन तमाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ

0: Siphonia Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

मिका पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहरदा नारी ले प्रगति पथक।

0: सुनी सूर्य को अब तू कहरदासु भने अन्त एकरानले गुनी।
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जोदायको फलचारी बुद्धि हिन तन जानकी सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम लोग उजागर, रामदूत अजुल दल धाम अंजनी पुत्र पवन सुतराम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमती निवारी स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजौ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगाधर आया, हेम रूपधरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर्षियुर लाए, रघुपती कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सुम भाई, सहज बदन तुम्हार जस गावे, अज कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र जोजन पर भानु, लिलो ताई मद फल जानु, प्रभु मुन्द्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर्जन आई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुगर तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिता से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जोलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रव रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटई मिट सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख होई, जो ये पड़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सनाहरी चेरा, किजनाथ हृदय महडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसवं स्वरूप, शिया पर रामचंद्र शंकर जी बाजा, जय हनुमान जय बजरंग बली।